सब बलिहारा, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम। आज पहर आराध्य पूर्ण सतगुरु ज्ञान, पूर्ण सतगुरु ज्ञान।

काल के नजदीक चला गया। जिवें दो मित्र एक दूजे नाल गल्लां करते कि दुश्मन नूं भी ना हरखी जाए। मालिक कोल बैठ के कह रहा, रब तू भी किठा सी और बड़ा खतरनाक ठग, शायद दुनियावी ठगां दी जाल विचों कोई निकल जाए, पर तेरा ऐसा जाल है कोई नहीं निकल सकता। वेख न, एक तरफ बाप है एक तरफ पुत्र है, पुत्र जवान होंदे है, दोहां विच तेरी जोत है, वेखदिया पुत्र तुर जांदा है। ते बाप ताई मार के रो पे, कहिंदा मेरे जीवन दा की फर्क,

तू मेरे कम लग जा मैं तेरे कम लग जाना, मैनू तू अपना कम दे दे ते मेरा कम तू ले। संसार च ऐसा चल जाता, एक दूसरे दे काम आना, जिस काम दी जिदी जिन्नी समर्था होवे। बड़े पुराने समय तो बंदा काम दा लैन देन करदा रहे, जेड़ा काम मैं नहीं कर सकता जेड़ा कर सकता है ओनू जाके बेनती करा तू ये कर दे, एदे बदले च तू जेड़ा काम मैं कर सकना वो मैनू दस। एक दूजे दे काम आ सकी, संसार च भी ऐसा वरते है, पर कई बार ऐसा भी होया कि जिदे ते भरोसा किया है कि मेरा काम कर सकेगा ओदी समर्था थोड़ी होने करके कई बार निराशा का मूंह भी वेखना पिया होगा। महाराज सानू एक प्रेरणा बख्शिश कर दे कि जे परस्पर काम आउन दी एक दूजे का काम करन दी सांझ पाउनी है तू वाहू नाल पा के वेख। मालिक तू जो चाहे कर सकना है, तेरी समर्था महान है, करता पुरख जो है सब कुछ कर सकना है, ते मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैथों कुछ भी नहीं हो सकता। जब कुछ भी नहीं हो सकता मेरे को एक काम तो हो सकता है कि मैं हाथ बन के तेरे सामने खड़ा हो जावा, अरदास हो सकती है, और सच्ची गल जानना अरदास खड़े हो जाना ही रब का काम है। ओदे काम लगन का मतलब यह है कि असी ओदे चरणा ते टह पईए, ओदे नाल सांझ पाउण वास्ते प्यार पैदा कर लईए हिरदे विच, और जिसले साडे हाथ जुड़ जाण मस्तक न्यों जाए। इहदे दो अर्थ हुंदे ने, हाथ जुड़ जाण का मतलब है साहिब जी मैथों कुछ नहीं होना, इन्हां हाथां ने कुछ नहीं कर सकना, इन्हां हाथां तो होना कुछ नहीं, यह हाथ बहुत थोड़ी समर्था वाले ने, इन्हां हाथां च ताकत नहीं कुछ कर सकन, आप करता पुरख हो, इन्हां हाथां तो कुछ नहीं होना, यह हाथ बज गए, यह हाथ तेरे सामने जुड़ गए, इन्हां तो कुछ नहीं होना। एक तो दोवें हाथ बन के सत्कार हुंदा है ना, किसी दूसरे का अभिवादन करना होवे आदर करना होवे तां भी हाथ बनने, लेकिन प्रभु अगे गुरु अगे हाथ बनने का मतलब यह भी हुंदा है कि इन्हां हाथां तो कुछ नहीं होना, बल्कि जिसले मत्था टेक देने आ इहदे पिछे भी दो गोज भाव ने। एक तो यह हुंदा है कि मैं दुरमत त्याग के गुरमत लैन आया, लेकिन समर्था के संबंध में भी मत्था टेकने आ सी, मत्था टेकने आ पातशाह इन्हां हाथां तो होना कुछ नहीं, इस दिमाग तो सोचिया भी कुछ नहीं जा, मैं तो सोच भी ठीक तरह नहीं सकता, मेरे सोचने च बड़िया भुलां ने, मेरी थां सोचो भी तुसी, मेरी थां ते मेरे वास्ते व्यौंत भी तुसी बनाओ ते करो भी तुसी, ते मैनू सिर्फ अपनी भगती च अपनी अरदास जोड़ दो, मैं तुहाडी अरदास जुड़िया होवां, अरदास अर्ज दाश्त बेनती कर रहा हो, अर्ज कर रहा हो, मैं केवल अरदास जुड़िया होवां। एक ते जुड़ जाए ना बंदा, साहिबा ने विश्वास दृढ़ कराया, बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास, खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है। ये वखरी गल है, मुश्किल तो ये है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है, जुड़ना ही औखा है, अरदास जुड़ जाना ही औखा है, नहीं जुड़े रहा तो ये वास्ते भी अरदास करिए, बादशाह कर कृपा अपनी भगती लाए, तू मैनू अपनी अरदास जोड़ दे, अपनी भगती नाल मेरी लिव एकागर करन दी समर्था मैनू बख्श, फिर मैं अरदास च लगा होवांगा, हाथ बन के मस्तक निवा के मैं तेरे काम लगा होवांगा, भगती च लगा होवांगा, प्रभु दा होर कोई काम साथों थुड़िया नहीं गया, वाहिगुरु दा कोई काम साडे गोचरा नहीं, प्रभु केवल प्यार चाहुंदा साडे कोल, सतगुरु केवल साडे कोलों प्यार चाहुंदा, ते जिस दिन सिख नूं प्यार करना आ जाए अरदास करनी आ जावे ना फिर की हुंदा है, जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। एक तां हुंदा ना काम हो जाना, काम कर लेना, काम नबेड़ लेना, ते आम तौर ते बंदा कोई काम कर लवे ना पहला तो करन तो पहला ही थड़कदा हुंदा है, घबराया हुंदा है, डगमगाउंदा है, ते जे किते काम हो जाए हंब के बह जांदा है, पसीने पूंजदा है, सजना मित्रां नूं कहिंदा है शुक्र करना काम निबड़ गया, बंदा केवल नबेड़ सकदा है, लेकिन सतगुरु जिसले करदा है ते नबेड़दा नहीं, सतगुरु कारज सवारदा है, वड्डी वड्याई अचरज सोभा उस कार्ज विच शोभा हुंदी, माण हुंदा है, सत्कार हुंदा, उस कार्ज दी वड्डी वड्याई हुंदी,
कार्ज आया रासे नानक कौ गुर पूरा भेटियो सगले दुख बिनासे जदो सतगुरु कार्ज करना आ जावे उसले कार्जा च सोभा हुंदी ते अरदास करन वाले दा मुख उजला हुंदा ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਏ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਦੇ ਆ ਬਲਕਿ

करके अंदरों को जाओगी और ध्यान देना बंदा वेखण नूं किड्डा सोहना ते किड्डे सोहने वस्त्र पाए हो जे ओहदी अखां च काम है ना ते अणजाण बच्ची कहिंदी है मां इस बंदे दी अख ठीक नहीं ये वेखदा होर तरां जे किसे दी बंदी बंदे दी अखां विच लोभ होवे ना ते बंदा चीजां अगां पिछा रख लैंदा कहिंदा कि ते इस बंदे दी अख दा भरोसा कोई नहीं कोई चुक नाल जा क्योंकि लोभी अख वाला बंदा इहदी अख विच लालच टपकदा है ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹਿੱਕ ਫੁਲਾ ਕੇ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ भगत तेरा है मन भाव दे मेरे वाहगुरु जी तेरे भगत जेड़े ने तेरे मन नु भी चंगे लगते क्यों चंगे लगते ने दर सोहन कीरत गाव दे ओ तेरे दर ते बैठ के तेरा जस गाउंदे ने ते सोहने हो जांदे तू बहुत सोहना है अत प्रीतम मन मोहना घट सोहना तेरा दरबार भी बहुत सोहना है ते जेड़े तेरे दरबार नाल जुड़ गए ओ किवें ना सोहने होणगे कहिंदे ने लोक फिजियोलॉजिस्ट कहिंदे मिट्टी का भी असर होंदा तुसी देखना कई बार तुसा देखिया होवेगा कुछ जानवर ऐसे होंदे ने जिहड़े रुखां ते पक्के ही रहिंदे ने जिहो जिहा रुख ते रहिंदे होण उहो जिहा उहदे खंभ हो जांदे ने उहो जिहा रंग हो जांदा कलर दे सप दा रंग होर है घाह विच रहिण वाले सप दा रंग हरा है काली मिट्टी च रहिण वाले नागां दे रंग सुरमई ते काले ने क्यों मिट्टी भी अपना रंग चढ़ाउंदी घाह भी अपना रंग चढ़ाउंदा है बर्फा दे इलाकियां च रहण वाले बंदे चिट्टे ने इक्वेटर दे नेड़े रहण वाले लोग जिहड़े ने ओह काले काले क्योंकि काली मिट्टी दे च रहिंदे ने की कारण है मिट्टी भी अपना रंग चढ़ाउंदी है ते बंदा संगत च बह जाए संगत दा रंग ना चढ़ेगा गुरु की हजूरी च बैठ जाए गुरु का रंग ना चढ़ेगा जिसले गुरु नानक नाल जुड़ के बैठेगा गुरु नानक दा रंग चढ़ेगा गरीबी आवेगी निम्रता आवेगी हंकार मिट जाएगा जिथे काम रहिंदा सी उथे राम रहेगा जिथे क्रोध रहिंदा सी क्रोध निकल जाएगा उथे बोध आ जाएगा सोझी आ जाएगा जिथे लब वसदा सी लोभ वसदा सी उथे रब वसेगा जिथे मोह वसदा सी उथे मोहन वसेगा जिथे हंकार रहिंदा सी उथे निरंकार वसेगा ते बंदा बदलना जाएगा बंदा होर दा होर हो जाएगा तुसा वेखिया कई महापुरुष जिहड़े भगती ते सिमरन वाले ने शकलों कोई बहुते सोहणे ने लेकिन आखीदा बाबा जी दे दर्शन करने क्यों की दर्शनां च की पिया है काला रंग है मूह ते माता दे भी दाग ने मोटी सारी ऐनक लगी हुई है बाबे दा वेखण वाला की है उस बाबे दा जीवन वेखण वाला ओदे दर्शन करके करके चित प्रसन्न हुंदा है क्योंकि ओ बंदा रविदास दी नगरी दे वसण वाला है जिथे बेगम पुरा है सूख महल जाके ऊच द्वारे बंदा बदल जांदा है उस अवस्था च जाके मनुख बाहरों भावे कुछ नजर आवे अंदरों इन्ना पवित्र ते स्वच्छ हो जांदा है गुरु नानक नूं चंगा लगदा है प्रभु नूं चंगा लगदा है संसार नूं चंगा लगदा है अपने आपे नूं चंगा लगदा है धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह संगत सहित बैठे सन कुछ प्यारियां प्यारियां विचारां दे नाल सिमरन अभ्यास दा समां सी सारे जुड़ के नेत्र बंद करके चौंकड़े मार के बैठे साहिब आप भी जुड़ के बैठे अचानक थोड़ी जी खलबली हो गई बाहर शोर मचिया साहिबा ने नेत्र खोले क्यों भाई ये बाहर रौला कद है शोर कद है किसे प्रेमी ने क्या कहन लगा महाराज आ बाहरों एक बंदा आया वो कहिंदा भी अपने इस स्थान ते कुछ चोर आवड़े साहिब मुस्करा पे कहन लगे उन्होंने वेखिया है अखे जी हां खुरा आया है बंदा आया है दौड़ के अंदर लंघ आया ओदा खुरा दसदा है कि इस दरवाजे अंदर अंदर लंघे साहब कहन लगे जेड़े चोर दे भालू ने उन्होंने बुला लै अंदर चोर दे लभण वालियां नूं खोजियां नूं बुला लो अंदर ओ बंदे जेड़ी वार लगी सी चोर दे मगरों आ गए महाराज दा सत्कार कीता कहन लगे सतगुरु जी साडा चोर इत्थे अंदर आया खुरा दसदा है साहब कहन लगे भाई जे तुहाडा चोर इत्थे ते वेख लो आ जाओ आ जेड़े बंदे बैठे ने संगत सजी हुई एन जुड़ के बैठे ने सारे साहब कहन लगे इन्हां दे विचों जिहड़ा तुहाडा चोर है भाई देख लो वेखिया किसे ने एक बंदा कहिंदा जी मैं माड़ी जी झलक वेखी सी बाकी तां खुरा ही लपदे आए साहब कहन लगे जे वेखिया ते लभ लो ओ सारे देखण लग गए ओ देखी जा रहे ने बंदा नहीं पिया लभदा
अगे पासे आ गए, अगले पासे सारे

साहिब सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह दा जिन्हां ने यह हुक्म सुनिया नंदेड़ सचखंड साहिब पातशाह जी हजूरी विच सदके जो तख्त चवर दे मालिक साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब नूं थापिया गया इत्थे प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा ते हुक्म दे अंदर बड़ा फर्क है। प्रेरणा किसी नूं कीती जाए वह प्रेरिया जाए ना प्रेरिया जाए उहदी मर्जी। जदों हुक्म किसी नूं सुनाया जाए जां तां हुक्म मन के प्रवान हो जाऊ ते जां हुक्म अदूली करके गुनाहगारां दी कैटागरी शामिल हो जाए। हुक्म दा अर्थ दूजा नहीं निकलदा है, या वह मनिया जाता है तो या उसकी अवज्ञा होंदी है। अवज्ञा करने वाले नूं जो सजा होंदी है यह सारा संसार जानता। हुक्म लॉ एंड आर्डर नूं कोई ना मने ता जो उसका हशर हुंदा है, जो उसका वर्तारा वरदा है, किसी भी अज्ञानी तो अज्ञानी पुरुष तो भी भुला नहीं। कलगीधर पातशाह का यह हुक्म है, सब सीखन को हुक्म है कि गुरु मानियो ग्रंथ। तो यह हुक्म कलगीधर का सुन के तो उसका कहाने वाला कोई गुरु का सिख किसी देह के अंदर गुरु का विश्वास रखी तुरिया पे, ऐसी कलगी धर दे हुक्म की अदूली करने वाला अपने आप नूं सिख किवें इखला सकता है। उहदा तां इह हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां की दे, जो प्रभ को मिलवो चाहे खोज इन्हीं में ले। ते जे गल्लां करनी है, जे बातां करनी है, जे दीदार करना है, ते बह जाओ हजूरी विच, सज जाओ आके इशनान करके। जंदीए साहब की बख्शिश है भी जो गल्लां करोगे तुहाडी रसना ते आप ही बोल बोल तुहानू सुनाई जाऊगी, ऐ कर आ ना कर आ मार्ग अख्तियार कर, ये उत्तम है, ये प्रमाणिक है, ये ना प्रमाणिक है, तुहाडी रसना ते बैठ के तुहानू समझाई जाऊ। ऐसा होर चतर दुनिया का गुरु कौन हो सकता है जिहड़ा तुहाडी रसना नूं वरत के आप ही तुहानू कही जाए, जंदी बोलण वेले तुहानू ही गुरु बना दे। कैसा विचित्र साहब सतगुरु का करिश्मा है। तो जिन्हें भी प्रभु नूं खोजना है तो इहदे विच समाया है, यह राह दसेगा। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दसणगे भी गुरु अकाल पुरख की प्राप्ति का मार्ग की है, आपे दसणगे जो गुरु सतगुरु का जो सिख का, आपे बोलणगे। जिहड़े कहिंदे ने यह बोलदा नहीं, यह सुनदा नहीं, तो मैं समझा भी रब ने संसार कन्न तां उहनां नूं दित्ते, पर गुरु ग्रंथ साहिब बोलदा सुनन वाले कन्न नहीं उन्हां नूं दित्ते। नेत्र तां दित्ते पर साहिबां दी दसे सतगुणां दी जोत वेखण वाले नैण नहीं दित्ते। सुन के अमल करन वाली गुरु ग्रंथ साहिब दा ज्ञान करवाउण वाली शब्दावली सुन दा उन्हां नूं संसारक तौर ते पाए इंदिरा करन बख्शिया है, पर साहिब ने गुरु ग्रंथ साहिब दा उपदेश सुन नहीं दित्ता। इसलिए सब सिखन को हुक्म है कि आओ टेको मथा ते गुरु मानियो ग्रंथ। आओ बीबियां तो शब्द सरवण कर लो ते साहिब सतगुरु पातशाह दी मेहर दा सदका जी चितता करदा नहीं, पर बद्धे रुद्धे बाबा जी दी क्योंकि सेहत मैं समझदा वी गुरमुख भुल जांदे ने अपना आपा शरीर दा, जे हर जस ना हुंदा होवे ते संसार दीआं गल्लां बातां हुण फिर भावें शरीर दे विच उहनां दी सुता आ जाए ते महसूस करन वी सानूं कुछ खेद है, पर जे शरीर दे विचों शब्द दी टनकार दे नाल कोई गुरमुख सुना के गुरु का कीर्तन ते गुरमुख गुरसिख महापुरख की आत्मा नूं उहदे असली टिकाणे ते लै जाए उहनूं शरीरक कष्ट भुल जांदे। सो साहिब दी बख्शिश है, मेरी तां इह अरदास है इस गुरमुख आत्मा नूं सतगुरु सदा मेरी आजू ते अरोगता बख्शे, तां जो असी संगत करके दीदार करके इन्हां दी कमाई दा कृष्णा वेख के कदे साडे मूर्खां दी भी सुरते इस पासे नूं पलटे ते असी भी कुछ अपना परमार्थ दा धन पल्ले बन के जिस मार्ग दे उत्ते हर एक ने समय समय अपनी वारी सिर तुरना है, असी भी अपनी वारी सिर तुरन तो पहला कुछ ना कुछ पूंजी भी हाज लईए ते जिहड़ी सानू उत्थे कम आ सके। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

सुरत ना श्रवणन बचन मधोकी है, अंग अंग हीन दीन कैसे बरमाल करो, मस्तक नाहे

मेरे हृदय च कपट है ते तू मेरे कपट नू जानना। मैं भी कुछ जानना, मैं सिर्फ इना जानना कि तेन बख्शना भी आउंदा। जे तू साडे दिल दियां जानना है ते तेन जान के फिर बख्शना भी आउंदा। वेख के साडे बारे जान के फिर खिमा कर देन दी भी गल तेरी है। ते जे साडे वल्लों गिणिया जावे ते फिर तां बड़ा मुश्किल है। जे मालिक तेनू प्रवान करन वास्ते, तेनू प्रवान होन वास्ते, तेनू प्राप्त करन वास्ते मैं अपने वल वेखा ना, मेरे कोल रूप है ना, मेरे कोल अखां ने ना, अखां विच ओह नजर है जिहड़ी तेनू वेख ते माण सके, ना मेरे कोल रूप है जिहड़ा तेनू दिखाया जा सके, ना मेरे कोल ज़बान है जिहदे विचों मिठे मिठे बचना नाल मैं तेनू रिझा सका। बल्कि मेरी ता सुरत दे, मेरी करनी दे हाथ पैर भी सिद्धे नहीं। कुलहीन कह लो, गुणहीन कह लो, ते जिदी कुल भी कोई ना होवे, जिदा गुण भी कोई ना होवे, ओदी शोभा भी कादी। ऐसी अवस्था च मैं तेनू प्राप्त किवें होवां, तेनू प्रवान किवें होवां, तेरे नेड़े किवें होवां, कोई चारा नहीं। हां जद ए जानना कि तेरा बिरद बख्श लैण वाला है, तेरा सुभा, तेरा नेम बख्श लैण दा, उदों आके भरोसा थोड़ा हो जांदा है।

तेरे बारे सुनदा समझदा मैं मनदा जो हम अधम कर्म के पतित पहे माड़े कमा करके असी ता पापी हो गए पर तेरा भी ता नाम पतित पावन प्रभ नाम प्रगटायो है तेनू ता लोग कहंदे ने पापियां नू पवित्र करन वाला जो पहे दुखी अर दीन पर चीन लग पुराने माड़े कर्मा करके दुखी हो गए ते तेरा भी ता नाम दुख भजन दीन दुख भजन बिरद बिरदायो है तेरा भी ता सुभा पुराना है कि दीना दे दुख दूर करदा है जो ग्रसे अर्क सुत नरक निवासी भय माड़े कमा दे बंधन च पए हुए असी जूंदे ही नरक च पए गए कुछ तो होंदे ने मरण तो बाद नरका च जानगे ऐसा सोची बैठे ने नरक तो डरदे ने पर मेरे मारे कमा ने तो मेनू इथे ही नरक बना के रख दिता हिरदे विच नरक बन गया घर च नरक बन गया जीवन की जुगत होवे ते घर स्वर्ग बन जाता है हिरदा ही स्वर्ग बन जाता है जीवन का ढंग ठीक ना होवे एक हिरदा की ते एक घर की आले दुआले नूं बंदा नरक बना के रख देंदा मरण तो बाद ते नरक दीआं गल्लां इक पासे जीवन विच भी नरक स्वर्ग चल रहे है कुछ ऐसे भी ने जेड़े कंडियां दी सेज ते भी स्वर्ग बना बैंदे ते कुछ ऐसे भी ने माड़े कम्मा वाले मेरे वर्गे जेड़े फुल्लां दी सेज ते भी नरक खड़ा कर लैंदे मेरी करनी तां इस तरह दी है मैं तां नरक निवासी हो गया मैं नरक बना लिया मैं जिउंदा ही नरक च पै गया पर नरक निवारण जगत जस गाया लोकी तेरा जस गाउंदे ने तू नरकां विचों कढ

हुण तू अपना सुभाव वेख। मेरा सुभाव मैं जतन करना के बदल जावे, बल्कि तेरी कृपा हो जावे ते बदल भी सकना। पर मेरे सुभाव ते मेरी करनी वाले पासे मेरे मालिक तू ना वेखी। तू अपने सुभाव ते अपने असूल ते कायम रह। तू बख्शंद होने दा सबूत दे। और कई बारी शायद ऐसे भरोसे ही तेरी बख्शिशों का सहारा है हमको, इसी वास्ते हम गुनाह कर रहे हैं। ऐसे करके भुली जाने, ऐसे करके गुनाह कीती जाने तो कोई नहीं बख्श देवेगा। हालांकि ऐसा चाहिदा तो नहीं, मैनू ऐसा होना तो नहीं चाहिदा। तेरे बख्शंद सुभा दा मैं योग लाभ उठावा, क्यों ना मैं सुधर ही जावा। पर सुधारना भी तेरे हाथ है। पिछले गुनाह बख्श के अगो मार्ग पाना भी तेरी समर्था है। मेरा सुभा ना वेखना, अपना असूल ते अपना सुभा वेख के ओदे अनुसार मेरे नाल वर्तना।

सिक्का जद हर दो आलम तेगे नानक साहिब अस्त फतेह गोविंद सिंह शाहे शाहान फजले सच्चा साहिब अस्त। ए लफज जेड़े लफज आप जी सरवण कर रहे हो ए लफज जेड़े सन सिख राज दे पहले सिक्के ते लिखे गए। जदो सिख राज दा पहला सिक्का बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जारी कीता उस सिक्के ते बाबा बंदा सिंह बहादुर ने ए लफज लिखाए जेड़े के इतिहासिक लफज हन। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपने नाम ते सिक्का नहीं चलाया बल्कि धन गुरु नानक साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे नाम ते ए सिक्का चलाया। सिख राज दा पहला सिक्का जिदे बोलां दा ए मतलब है सिक्का जद हर दो आलम कहंदे ने दो जहान तेगे तेगे क्या है तलवार नू किरपान नू नानक साहिब अस्त फतेह गोबिंद सिंह शाहे शाहान फजले सच्चा साहिब अस्त फजले कहंदे ने मेहर किरपा। इना दोना लाइना दा अर्थ ए सिक्का दोहां जहाना वास्ते है। गुरु नानक देव जी दी तलवार नाल अति शहनशाह दे शहनशाह सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी दी कृपा द्वारा ए सिक्का चालू होया।

माधुदास वैरागी। गोदावरी दे कंडे आश्रम बना के रहण वाले जिदे आश्रम वाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जा रहे ने, इस बारे थोड़ा जहा ज्ञान जरूरी है। लिखे है लक्ष्मण देव का जन्म जम्मू अते कश्मीर की एक रियासत राजौरी विखे होया। जम्मू कश्मीर की एक प्रसिद्ध रियासत जिदा प्रसिद्ध नगर राजौरी, जिथे लक्ष्मण देव का जन्म होया। इन्हां दे पिता एक मामूली जहे जागीरदार सन और एक दिन शिकार खेडदिआं लक्ष्मण देव ने एक तीर दे नाल एक हिरनी नूं मार सुटिआ, पर वह हिरनी गर्भवती सी। जदों हिरनी नूं तीर मारिआ हिरनी जिहड़ी सी मरी, उहदे पेट विच दो बच्चे सन जेड़े के तड़फ तड़फ के वो भी मर गए। इन्हां छोटे छोटे बच्चियां दी मौत हिरनी दे नाल लक्ष्मण देव ने देखी, उहदे मन ते अजिहा असर होया कि उसने घर बार छड़ दिता। इस दुनिया तो उसका जी भर गया, पहला सन्यासी बने, उसका नाम नारायण गिरी पै गया, फिर बैरागी बने, योग सिख्या ले, फिर माधोदास बैरागी बन गया। कई जगह हुंदा होया, दक्षण महाराष्ट्र नादेड़ वाल तुर पिया, गोदावरी दे कंडे आश्रम बना के रहन लग पिया अते अपना समा योग साधना विच बतान लग पिया। इस गोदावरी दे किनारे बहुत समा योग साधना करदिया बीत गया। इत्थे ओ सारी दुनिया तो दूर सारी दुनिया नाल रुस के घोर तपस्या विच जुट गया। इसे जगह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आज अपने सिखां दे नाल घोड़ियां ते सवार होके पधारे हन। जिस वक्त माधोदास दे आश्रम पहुंचे ते माधोदास उस वेले अपने डेरे विच नहीं सी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज माधोदास दे डेरे पहुंचे अते जाके माधोदास दे पलंग ते विराजमान हो गए। माधोदास दे चेलिया ने कहा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं कि ए साडे स्वामी दा पलंग है, आप जी इत्थे ना बैठो। पर गुरु साहिबां ने कहा असां जिथे बहना सी बह गए हां क्योंकि गुरु दे कौतक गुरु जान दे। उधर चेले जंगल विच भजे गए, माधोदास बैरागी नूं जाके कहन लगे तुहाडे पलंग ते एक बड़ा तेजवान पुरश आके बैठ गया, लाओ लश्कर भी नाल है। उहदे चेहरे अगे किसे दीआं अखां नहीं हुंदीआं। तां माधोदास गुस्से विच आ गया, कहन लगा दिखावे पलंग पर बैठने का स्वाद कि जेड़ा मेरे पलंग ते बैठा है मैं उन्हों पलंग तो थले डेग देंगा
और अपनी योग शक्ति दे नाल जंगल विच बैठे हैं पलंग नू उल्टान दी कोशिश की थी पर माधोदास बैरागी पलंग नू उल्टा ना सके है। जद माधोदास बैरागी ने पूरा जोर लाया पलंग उल्टान वास्ते पलंग ना उल्टा सकया ता समझ गया कि मेरे पलंग ते जिड़ा बैठा है वो कोई मामूली इंसान नहीं। ते माधोदास बैरागी अपने आसन तो उठया और ए देखण वास्ते आश्रम वाल तुर पिया

योग साधना विच मगन रहा सी। इस तपस्या द्वारा उदी आत्मा जाग पई सी, उस दे अंदर पवित्रता सी, सफाई सी, उचता सी। इस जागृत आत्मा ने गुरु महाराज जी नु वेखदे सार ही पहचान लिया। उस महापुरुख बारे भी इस माधोदास बैरागी ने सुनिया। वो महापुरुष गुरु तेग बहादुर साहब जिन्हां ने तिलक अते जंजू दी रखिया ले दिल्ली चांदनी चौक विखे अपना सिर दिता।

महाराज ने माधोदास बैरागी नू अमृत छकाया ते नाम बंदा सिंह बहादुर रखिया अते नाल इन्हां नू गुरबख्श सिंह भी किया जांदा। गुरु साहब ने अपने पांच तीर दिते जिन्हां दे नाल सुनने लगे हुए सन। पांच सिंह अनेकां वस्तुआं दे के बाबा बंदा सिंह बहादुर नू जालमा दा नाश करन वास्ते नादेड़ तो गोदावरी दे कंडे तो पंजाब वल तोर दिते।

चाहिए। शिवजी भगवान ने कहा बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए, पर सती जी ना मने ता भगवान ने जान दी इजाजत दिती। सती जिस वक्त अपने पिता दशक प्रजापति दे महलां विच पहुंचे जिथे याग हो रहा सी, तां दशक प्रजापति ने सती नू कोई आदर ना दिता, सगा शंकर भगवान का भी अपमान किया। जदों इस गल का सती ने बुरा मनाया तां दशक ने अगू सगा होर किया, ओ नंग तड़ंग शिवजी भगवान, मैं ते कदी भी राजी नहीं सा उसनू अपना जवाई बना के। सती ए बर्दाश्त ना कर सके, उन्हां योग साधना दे नाल अपने शरीर विचों अग पैदा कीती, सड़ के भस्म हो गए। शिवजी भगवान नू पता लगा तां उन्हां ने उसे वक्त अपनी एक लिट पुट के सुटी, जिदे विचों भयंकर आवाज करदिया होया महाभैरों वीरभद्र वगैरह पैदा होए, ते जिन्हां ने आग्या मंगी तां भगवान ने कहा जाओ उन्हां दुष्टां दा नाश करो जिन्हां ने सती दा अनादर किया। तां उसे वक्त उन्हां ने दशक प्रजापति दा सिर वढ के यग दी अग्नि विच सुट दिता। हर पासे खून दे फुहारे छुट पए, सारे लोग इउं नसन लग पए जिउं प्रचंड महातांडव नचदी होई परलोह आ गई होवे। इसे तरह यह कथा शिव पुराण दी। शिवजी भगवान ने महाभैरों नूं अपने तेज विचों जिवें पैदा किया, अपने अलेटां विचों

पंजाब वल तोरे है जेड़ा कियामत जगाउंदा पचाल लियाउंदा खून दियां नदियां वगांदा होया पंजाब वल वध तुरे है। किसी ने पूछया बंदा सिंह तुसी ये की कर रहे हो ता बंदा सिंह बहादुर ने कहा मैं अपने वास्ते कुछ नहीं कर रहा मैं जालमा का नाश कर रहा उन्हां किलियां नूं ढा के ढेरी कर देंगा जिन्हां विच जुलम होंदे ने वो शहर तबाह कर देंगा जिन्हां शहरां विच मजलूमां नूं जालम तंग करदे ने। इह कहिंदा होया बंदा सिंह बहादुर पंजाब नूं

बंदा सिंह बहादुर जगह जगह जालमां नूं सजा दिंदा होया सरहंद दे लागे जा पहुंचिया। सरहंद जेड़ा कि पंजाब विच एक ऐसा शहर सी जिहदी तुलना किसे समय आगरे दे नाल लोक करया करदे सन। आगरे शहर तो भी वधिया जे कोई शहर है ता सरहंद है। जिस वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर सरहंद दे कोल पहुंचिया अपनियां फौजां दे नाल और इस सरहंद वल बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कहर दिया निगाह नाल देखिया, वो नजारा उन्हां दी अखां दे सामने आ गया। इस सरहंद विच वजीर खान ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के छोटे साहबजादे जिन्हां दी उम्र 8 साल तो भी थले, उन्हां जिउंदिआं नूं इत्थे नीहां विच चिण के शहीद कर दिता गया। वह नजारा अखां सामने आया, अखां गुस्से नाल लाल हो गईआं। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपने फौजियां नूं वंगारदिआं होया आखिया, इहो ही उह सरहंद है जिस जगह मेरे गुरु दे नन्ने नन्ने मासूम बच्चियां नूं द्वार विच चुणिआ गया। मैं चाहना इस शहर का नाम निशान मिटा दे। वजीर खान उहदे अहलकार सब खत्म कर दिओ, नीहां विच साहिबजादे चिणे गए। देखो कोई दीवार ना रहे, कोई मकान ना रहे, कोई किला ना रहे, कोई छत ना रहे, हाल चला दिओ, इस शहर नूं मिट्टी च मिला दिओ। देखदिआं देखदिआं बाबा बंदा सिंह बहादुर दी फौज ने सरहंद ते हमला कर दिता। वजीर खान अपने वजीरां नाल अहलकारां नाल जरनैलां दे नाल लड़न वास्ते आया, पर बाबा बंदा सिंह बहादुर अगे कोई टिक ना सकिया। देखदिआं देखदिआं शहर साड़ के सुआह कर दिता, किले ढा दिते, मकान ढा दिते, शहर नूं ढा ढेरी कर दिता। वजीर खान वह भी मारिया गया, उहदे वजीर अहलकार जरनैल सिपाही सब मारे गए। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद ते फतेह कीती। जिस वक्त सरहंद नूं फतेह कीता, उहदी इट नाल इट वजा दिती और फिर फतेह दा डंका वजा के ए नहीं कहा कि मैं जितया, हाथ जोड़े ते कहन लगे, धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह आप दी कृपा द्वारा साहिबजादियां दी शहीदी दा अज मैं बदला ले लिया। और 7 साल जुल्म दे खिलाफ तबाही अते बर्बादी दा ए तूफान बाबा बंदा सिंह बहादुर ने उठाई रखिया। बाबा बंदा सिंह बहादुर बेशक आप ना रहा, पर तुरकां दी हकूमत नूं उसने मिट्टी विच मिला के रख दिता। अते जदों फतेह कीती, तुरकां दी हकूमत खत्म कीती, तां उस वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर ने फिर सिख राज दा पहला सिक्का चलाया और उसते अपना नाम नहीं गुरु दा नाम लिखाया। सिक्का जद हर दो आलम तेगे नानक साहिब अस्त, के ए सिक्का दो जहाना वास्ते है। गुरु नानक दी तलवार अते गुरु गोबिंद सिंह जी दी कृपा द्वारा

आख्या फरमांदे ने। आम करके दुनिया कन रस विच उलझी है, ये आत्म रस दी खुराक है, आत्म रस जै जाने ही सो है खालस दी। पातशाह आखदे ने

ज्योतिष विद्या कदे गलत नहीं हुई। मेरे हिसाब नाल ए बालक दुनियावी बालक नहीं, ए तां परमात्मा दा रूप है। सात सगत बोलो श्री, ए प्रभु दा रूप है। मैं ता कालू ने खुश होके पंडित हरदयाल नू इनाम वजो धन दिता और प्रसन्न होके घर आया। हुण चारे पासे माता तृप्ता नू मैं ता कालू नू वधाइयां मिल रही हैं कि आज बालक ओ बालक पैदा होया है जिसका दर्शन करके सब दा तन मन ठर गया।

आप एकांत विच एक ब्रिख दे तले बैठ के ते और जड़ियां गाइयां मजियां सन ओ एक खेत विच वड़ गईयां।

है ना ओ मैं जप रहा हूं। गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी भी सच। हे निरंकार तू आद विच भी सच सें जुगाद विच भी सच सें हुण भी सच हैं

गुरु की जुगत गुरु के पुत्र हो गए। ते गुरु के पुत्र सत्संगी जिथे मिलके बैठ के प्रभु जस करते ने, जेड़ा आके उन्हें सत्संगियां च रल गया, गुरु पुत्रां च रल गया, प्यार दे रंग च रस्ता होया, प्रभु जस कर रहे हैं, प्रभु जस मान रहे हैं। और यह धर्म का मार्ग धरती दे धरन वाले निरंकार प्रभु ने गुरु दे रूप च आप धारण किया, आप बनाया। इस मार्ग ते जेड़े चलते ने धर्म पंथ तरयो धरनी तर आप, जेड़े इस मार्ग ते चलते ने रहे लिव तार ना तावत है, भटकना मुक जाती है, लिव जुड़ जाती है, जीवन का आनंद लेंदे ने। भगत भट्ट मथुरा जी कहंदे ने, कहंदे ने वड्डे भागां वाले ने लोग, मथुरा पन भाग भले उनके, मन इच्छित ही फल पावत है। उन्हां दे मन दी इच्छा प्रभु प्यार नूं प्राप्त करना और ये फल प्राप्त कर दे। ते कहंदे ने उन्हां नूं फिर रब दे सुत सूरज दे पुत्र धर्मराज दा डर नहीं रहिंदा, रब के सुत को तिन त्रास कहां, जो चरण गुरु चित लावत है, जेड़े गुरु चरणा नाल मन जोड़ लेंदे ने, उन्हां नूं नरक दा डर नहीं, जम दा डर नहीं, ते ना ही किसे सुर्ग दी इच्छा रह जांदी। गुरु चरणा दे प्यार च गड़ूंद होए आनंद लेंदे ने, रंग च रते होए

कि कृपा कर मैनू अपना ते मैनू मान बख्श, क्योंकि तेरे सिवा इस संसार ते मेरा होर कोई नहीं। ये अरदास है गुरसिख दी अपने परमेश्वर दे चरना कमलां।

संसार ते कोई प्राणी एक दूसरे दा कोई एक काज सवार सकदा है, कोई दो कोई तीन कोई दस कोई सौ, मगर सारे कार्य सवारन वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट लवां जो समर्थ है, जो मेरे सारे कार्य सवारन।

0: You are listening to CCAT Radio.
1: कुछ समय पहले लुधियाने तो बीबी अमरजीत कौर होरी शब्द कीर्तन वाले साढ़े को ननकाना साहब तशरीफ ले आए उन्होंने दी दित्ती हुई कविता पेश है पटने विच चन अज चढ़िया।

तेह रावण घर खबर ना पाई, क्या जाना क्यों मरेंगे कैसा मरना होए, मत कोई जानो अवर कछ सब

एक जंगल समान है जिस दे दूर दूर ता बड़ी भयानक अग लगी हुई है। जो अग्नि वड़े वड़े रुखां नूं पले हुए रुखां नूं सारदी तुरी जांदी है। ते जे पिछे वेखिए ता कोमल बूटे होर हरे होंदे आउंदे हैं। अकाल पुरख वाहिगुरु दी रचना सब में जोत जोत है सोए एक पासे संसार नूं समाप्त कर रहा है एक पासे संसार नूं जन्म दे रहा है। उस दी जोत सदा परिपूर्ण है जिस तरह अनेकां घड़िया दे विच जल हुंदा है ते सब घड़िया विचों आकाश मंडल नजर आ रहा है। घड़े जल दे भरे हुंदे हन ते उस जल विचों आकाश मंडल नजर आ रहा हुंदा है। ते जे कोई कड़ा टुट जावे ता आकाश नहीं मरदा केवल ए शरीर दा ठीकरा ही टुटदा है। इसे तरह ही संसार ते जो जीव आउंदा है साहब कहंदे हन कौन कहंदा कि फलाना मर गया है नहीं कौन मुआ रे कौन मुआ ओ ता पमने में पवन समाया पंज तत्तां दा इंसान बनाया ओ पंजे तत्त जदों वक हो जाते हैं इंसान की मृत्यु हो जाती है। साहब कहते हैं पवने में पवन समाया ज्योति में ज्योत रल जाया माटी माटी होई एक रोमन हारे की कमन टेक कौन हुआ रे कौन हुआ। ये अकाल पुरख वाहेगुरु की रचना है। ये जग ये सारा संसार उस ईश्वर की कोठड़ी है रचना है। साहब बाणी विच इस प्रकार दस रहे हैं।

साहिब सिफत सवालियो जिनकी तीसो पार पया कहो नानक करते किया बाता ओ जो किछ कर

शब्द गुर पीरा, शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा, शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्द जग भौराना गुरत।

स्वात्म जीतो दान दियो इन्हीं तो भलो पर आन को दान में लागत नी को आगे फल इन्हीं को दियो जस जग में और दियो सब फीको मोह गृह में तनती मनती सिर लो।

हे गुरु की संगत सिख एजुकेशन विद्या का प्रचार आहा ए गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी अपनी दात निरंकार तो मंग रहे हैं।

समझदार सोजी वाले आ, एक होर रस भी है जिन्हों नाम का रस कहें हरी का रस कहें।

और बड़े स्वाद तू वेखे होंगे। मालक ने बड़ी प्यारी रचना बनाई। साढ़े जेड़े ज्ञान इंद्रे ने ना, पांच ज्ञान इंद्रे, फाइव सेंसेस, अखा वेख दिया ने, जीभ चखदी, कान सुनदे ने, नक सुंघदा है, शरीर दी त्वचा, शरीर दी स्किन जो है छो के पता लाउंदी आला दुआला की है। लेकिन इहदे नाल इक होर भी गल है, इन्हां पंजां ज्ञान इंद्रियां च मालक ने रस भी पा छड़े, स्वाद भर छड़े। अखां वेखदियां भी ने, वेखण दा रस भी लैंदियां ने। जे तां नजारा वधिया है ते अखां रस लैंदियां ने, ते जे नहीं तां फिर मूंह दूजे पासे भी हो जांदा। जे सुनी जाण वाली आवाज सुरीली है, रस विच है, सुर विच है, ते बंदा ध्यान नाल सुणदा है, बल्कि हमातन गोश सारा शरीर कानी बन जांदा है, पूरा ध्यान। पर जे वो आवाज बेसुरी होवे ते कन्ना चुंगलां भी दे लैंदा, अण पौंदा शोर होवे ते नहीं भी बर्दाश्त होंदा। इसे तरह सुंघण दी शक्ति कदे बदबू भी लैंदी ते दुखी भी होंदी, खुशबू नाले सुखी भी होंदी। जीभ ते कुछ कौड़ा आ जावे ते थू थू भी बंदा करदा है, कुछ स्वादला आ जावे ते अखां भी बोलदियां ने रस आए। इन्हां पंजां ज्ञान इंद्रियां विच ही रस मालक ने भरे। इह नखेड़ लैंदे ने रस देण वाली कहड़ी कहड़ी वस्तु, ते फिर उस रस पिछे, स्वाद देण वाली शय पिछे कई वारी बंदा कमला भी हो जाता। इथों तक कमला होया बंदा कई बार इन्हां रसां पिछे, सुनन दे रस पिछे, सुंघण दे रस पिछे, वेखण दे रस पिछे, छोण दे रस पिछे, चखण दे रस पिछे। इन्हां स्वादां च कई बार बंदा इन्ना कमला हो गया जानवरां तों वी थले जावे। पावन बाणी च बचना है, मृग मीन भृंग पतंग कुंचर। मृग नूं हिरण नूं कन्नां दा रस है, मच्छी नूं जीभा दा रस है, पंवरे नूं सुंघण दा रस पिया है। फुल दे विच बैठा बैठा विचे ही शहीद हो जांदा है, फुल मिटिया जांदा विचे खत्म हो जांदा। पतंगा अखां दे रोग दा मारिया है, इहनूं वेखण दा रस है, ज्योति उत्ते सड़ मरदा है। पर महाराज कहिंदे ने देखो कैसी गल है, मिर्ग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश। इन्हां नूं एक एक स्वाद पिया, ते पंच दोख असाध जामे, बंदे नूं तां पंजे पंजे कट्ठे भी लगे होए। तां भी तां की केत कास, इहदा किवें बचाओ। असल गल इह है कि बंदे नूं अंदरला रस नहीं आया, एक आत्म रस भी है। साहिब कलगीधर पातशाह ने वचन किया, साहिब कहिंदे ने